0: जल्दी।
1: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
2: लव साउथ।
3: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
4: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
3: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र ता फूको बच्चे ते।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRI।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए।
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं सारे दियां बाहां भी तमिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड मालचन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079।
14: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
15: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
14: और विजिट www.calidonpaving.com।

0: your home for community. CJMR 1320.
1: तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: हाँ तो दोस्तों गल ऐसा है कि भाई मैं रात नूं बैठा सीगा मूड रोवल देखी जाते ही थे ओदे विच मैं चन नूं देखिया ते मैं चन नूं देखिया तो उन्हें मेरे की गल्लां कीतियां जिवें मैनूं ऐ लगे सुन के।

यार वैरियां तो घट नी सक्सेस छड़ दूजी मैनू कोई लत नी हुनर तो उच्चा रुतबे दा कद नी बैल बुद्धि मुंडे इत्थे कोई सप नी मेरा

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है।

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है.
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो.
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देखा.

किस्मत से लड़कर जीत सकता है। क्या हमारे किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है? क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है?

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: दो कुड़ियां साड़ी गली च रहंदियां, एक पतली एक भारी, हो भारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी, के दाल में नमक पुल गई, के दाल में नमक पुल गई, जद खिच के, हो जद खिच के

तैं न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
1: जीना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दिया धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नू विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मा वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लुट स्फिरण होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दी रस्मा इको ही छत थले हुंदियां हन। लुट स्फिरण होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 लोटस फ्यूनल होम।
2: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इथे हर तरह दी कार, वैन, ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर, अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर, अल्टरनेटर, जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह, 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक।
2: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी, ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी। क्वालिटी वर्क, प्रोफेशनल सर्विस, बिल्ड टू लास्ट। मैनसूरी ते स्टोन वर्क, इंटरलॉकिंग, फेंसिंग, पैडियो, रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहुंदे हो, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन। रिपेयर्स तो लैके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन दा नाम याद रखना जी। अज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836। Oracle Construction, strong foundations, lasting results।
1: पिछले 20 सालों तो कस्टम वुडवर्किंग दिया प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक। गूगल ते 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक, 173 एडवांस बुलेवार्ड, यूनिट 34, ब्रैम्पटन। और 9054580075 9054580075। मेपल वन किचन एंड बाथ इंक। नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारें दे विचों प्रोफेशनल पेंट द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तो चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग, जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिल्कुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-8339-60 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

पे गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा ये कायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो, अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक ना।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: गई
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: 25 में हरियाणा के अंदर हमारे साथ आना, 2025 में हरियाणा के मार्केट में बिजली पर पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नियत कार्यक्रम।
1: Yeah.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: बनके।
1: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Hey Sink, are you there?

तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: 4716704 416-524-6704
1: पे
0: विजिट 140 एडवांस बुलेवार्ड यूनिट नंबर 10 ब्रम्पटन
2: लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग स्पेशलिस्ट
0: एच के मूवर्स
3: जो आया
4: मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुरगे प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई काल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 लोटस फ्यूनरल होम।
5: नंगे आए ते नंगे आई जाना नालियां दा ना लेके जाना वो तन ते पा

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।
2: रेट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
3: सस्ता

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजे हे कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 9052328700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस
2: पील रेनोवेशन दा पैगाम अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेते रखो वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847 वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन
3: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए
4: यू आर लिसनिंग टू CNN टोरंटो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो।